यादों के सफर का शुरुआत हमने किया हमारे सेगमेंट पुकार से। मोहम्मद रफी की आवाज 1968 की फिल्म नील कमल, राजकुमार उबैदा रहमान पर्दे पर और द मैजिक कॉम्बिनेशन ऑफ रवि एंड शाहिल लुधियानवी। और चलो अब शामिल करते हैं फिल्म आज और कल, नंदा और सुनील दत्त की फिल्म, संगीतकार रवि। और इस बार सुनील दत्त नंदा को पुकार रहा है।

ये है यादों का सफर, आपके साथ फिरोज खान, हमारा स्पेशल सेगमेंट पुकार। और अब शामिल करते हैं 1962 की फिल्म हमारी याद आएगी, अनमिस्टेकेबल सॉन्ग।

बहुत से ऐसे गाने हमने सुने हैं जिसमें किसी ने किसी को पुकार रहा है, किसी को आवाज दे रहा है। इस पुकार में शिद्दत है, इस पुकार में तड़प है, और ये पुकार एक साया बनकर साथ चलता है। पुकार। और इस बार हम शामिल करते हैं फिल्म तेरे घर के सामने से निकाली हुई एक बार फिर मोहम्मद रफी, पर्दे पर देवानंद और मुन्नूतन, संगीतकार एस डी बर्मन और गीतकार

बहुत से ऐसे गाने हमने सुने हैं जिसमें किसी ने किसी को पुकार रहा है, किसी को आवाज दे रहा है। आज के स्पेशल सेगमेंट पुकार आपके लिए हम पेश कर रहे थे और इसमें इस सेगमेंट के आखिरी नगमा आपके लिए द क्लासिक ऑफ और इंतजार सॉन्ग्स एंड पुकार सॉन्ग, फिल्म दुलारी, 1949 की फिल्म दुलारी, दैट्स मोर देन 75 इयर्स अगो। द मैजिक कॉम्बिनेशन ऑफ नौशाद संगीतकार और गीतकार शाकिल वैद्यो ने, पर्दे पर मधुबाला के साथ श्याम कुमार। सुहानी रात डाल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी, दी अल्टीमेट पुकार।

0: की ना जाने तुम कब आओगे।
1: यादों के सफर के अंतर्गत आज स्पेशल सेगमेंट आपके लिए हम पेश कर रहे थे पुकार। अभी आपने सुना 1949 की फिल्म दुलारी, दैट्स ओवर मोर देन 75 इयर्स अगो, द जियो, संगीतकार नौशाद और गीतकार शाकिल रिजियानवी, पर्दे पर मधुबाला के साथ इस बार श्याम कुमार। अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम जारी रखेंगे यादों का सफर। फिलहाल इस छोटी सी फिल्मी धुन के बाद हम वापस आकर आपका सफर कराएंगे यादों के साथ। यही वो जगह है

0: यह है संगीत की जानकार और मैं हूँ आपके साथ ही फिरोज खान, एंटरटेनिंग ब्रिस्बेन ऑडियंस फॉर मोर देन 40 इयर्स।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार।
0: रेडियो ब्रिस्बानी 1701 ब्रिस्बेन। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक योर्स ट्रूली फिरोज खान आपके साथ हो जाते हैं साप्ताहिक प्रोग्राम संगीत की जानकार, जिसमें हम पेश करते हैं यादों का सफर हिट्स ऑफ 40s, 50s, 60s और 70s से निकाले हुए 12:30 बजे तक, और फिर 12:30 बजे से लेकर करीबन 5 बजे तक टेलीफोन लाइन 1701 के डेडिकेशन और रिक्वेस्ट टेलीफोन लाइन 3279-1701 आपके लिए खुल जाते हैं। जी यस, वी ओपन अ टेलीफोन लाइन डेडिकेशन लाइन 3279-1701 फॉर रिक्वेस्ट एंड डेडिकेशन, एंड टुडे सू विल बी देयर फ्रॉम 12:30। अक्सर वो 2:30 से आती है, जी हाँ 2:30 बजे से सू आपके साथ देती हैं, लेकिन आज सू टेलीफोन आपके स्वीकार करेंगे 12:30 से। जी हाँ 12:30 बजे से सू आपके इंतजार करेंगे आपके डेडिकेशन लेकर, आपके फरमाइश लेकर रेडियो 79 में पेश करेंगे। फिलहाल ये है संगीत की जानकार और मैं हूँ आपका साथी फिरोज खान। तो एक बार फिर वापस आकर आप सबका स्वागत करते हैं यादों के सफर में, और तो शुरुआत कर रहे हैं 1957। फिल्म के नाम मिस मेरी, पर्दे पर मीना कुमारी के साथ किशोर कुमार, हेमंत कुमार संगीतकार और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, आवाज लता मंगेशकर। यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। चलो सफर पे चलते हैं यादों के साथ। जिंदगी याद में भीगे हुए गुजरे ऐसे, जिंदगी याद में भीगे हुए गुजरे ऐसे, बाहरे बरसात में आंगन में चुनरिया जैसे। ये है यादों का सफर।

जी हाँ, यादों के सफर का शुरुआत हमने किया साल 1957 से, पर्दे पर मीना कुमारी के साथ किशोर कुमार और फिल्म के नाम मिस मैरी, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, हेमंत कुमार संगीतकार और गीतकार राजेंद्र कृष्णा। और अब चलो यादों के सफर के साथ में हम शामिल करते हैं साल 1981, जस्ट आउटसाइड ऑफ साल 1970, फिर भी चलो या साल 1981, फिल्म का नाम कुदरत और राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर्दे पर और आरती बर्मन संगीतकार और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, आवाज लता मंगेशकर।

0: यादें गुनाह है,
1: यादें मुस्कुराहट है,
0: यादें ख्वाब है।
1: यादों के सहारे ही व्यक्ति आज से कल में कदम रखता है और पीछे मुड़कर बीते कल को निहारता है।
0: ये है यादों का सफर।

यादों के अंतर्गत साल 1974 फिल्म के नाम आपकी कसम। जब फिल्म के नाम आपकी कसम हम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ पर्दे पर राजेश खन्ना और मुमताज देख नजर आती है। संगीतकार आर डी वर्मन, गीतकार आनंद बख्शी, आवाज लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार। हाँ, जब किशोर कुमार की बात हो रही है तो यादों के सफर के अंतर्गत इस बार स्पेशल फिल्म दूर गगन के छांव में। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? वेल, किशोर कुमार डायरेक्टेड दिस, किशोर कुमार गई म्यूजिक, संगीतकार किशोर कुमार, पर्दे पर किशोर कुमार, और इस बार वन ऑफ द क्लासिक सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार।

ये है संगीत की झनकार, बातों की झनकार ने मो म्यूजिक लेट्स टॉक, हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आपके लिए द अदर गोल्डन इयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। और इस बार यादों के सफर को जारी रखते हुए हम शामिल करते हैं साल 1963। यस 1963, और फिल्म का नाम गुमराह, संगीतकार रवि और गीतकार शाहिल लुधियानवी। गुमराह का नाम जब आती है तो हम सिर्फ सुनील दत्त और माला सिन्हा को देखते हैं पर्दे पर। आशा भोसले के साथ महेंद्र कपूर 1963 की फिल्म गुमराह। ये है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक यादों का सफर।

साल 1963, फिल्म का नाम गुमराह, सुनील दत्त और माला सिन्हा पर्दे पर। संगीत की झनकार पर ये है यादें, और यादों के सफर में अब हम शामिल करते हैं हमारे खास मेहमान आशा भोसले। आशा भोसले से गाई हुई कुछ चुने हुए संगीत। प्रोफेशनली आशा भोसले तो काफी कामयाब रहे, लेकिन पर्सनली उसने काफी ठोकरें खाई। शादी हो, बच्चे हो, परिवार हो, सभी जगह पर इसने स्ट्रगल तो काफी की। इन्हीं की जिंदगी के नाम कुछ लाइनें हैं मैं कहना चाहूंगा। हद ये शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे साथ पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो पता चला, सफर जो धूप का किया तो पता चला, ओ जिंदगी ही किया जो छांव छांव चली। आशा इतनी सारी हार्डशिप झेलने के बावजूद चेहरे पे हर वक्त प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर हमको मिलती है। 1958 की फिल्म काला पानी, देवानंद की फिल्म काला पानी, संगीतकार एस डी वर्मन और मजरू सुल्तान प्री गीतकार। एक बार फिर आशा भोसले के साथ मोहम्मद।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

1958 की फिल्म काला पानी, देवानंद की फिल्म काला पानी, एस डी बर्मन संगीतकार और गीतकार मजरू सुल्तान प्रिय, आशा भोसले के साथ इस बार मोहम्मद रफी। यह है संगीत की झनकार।

और इस बार 1966 के फिल्म तीसरी मंजिल मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले, आदि बनमन संगीतकार, गीतकार शाहिल लुधियानवी।

0: 1966 के फिल्म तीसरी मंजिल, शमी कपूर के फिल्म तीसरी मंजिल, आदी बर्मन संगीतकार, गीतकार शाहिली ध्यानवी और आशा भोसले के साथ इस बार मोहम्मद रफी। आज संगीत की झनकार में वन मेलोडी वो सुप्रीम और हमारे खास मेहमान आशा भोसले। क्या आपको पता है कि किशोर दा लता जी से बहुत ही डरा करते थे? उनको इतना डर लगता था कि वो बर्मन साहब से, बर्मन दा से कह चुके थे कि प्लीज लता के साथ मुझे नहीं गाना है, प्लीज डोंट पुट मी विद लता मंगेशकर, मुझे बहुत डर लगता है। सुर की बहुत ही पक्की है और मजाक मस्ती उसे कुछ ही पसंद नहीं है। किशोर हर वक्त ये कहा करते थे कि जब वो स्टेज पे गाते हैं आशा के साथ तो बहुत ही मजा आता है। और इस बार आशा भोसले के साथ किशोर कुमार, 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट देवनंद और नूतन की फिल्म, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार एस टी बर्मन।
1: ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहा।

मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। ओ निगाहें मस्ताना देख सम

गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे।

0: देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना।
1: 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट देवानंद और नूतन की फिल्म मजरू सुल्तानपुरी, गीतकार संगीतकार एस टी बर्मन, इस बार आशा भोसले के साथ किशोर कुमार। एक बार फिर साल 1957 फिल्म नया दौर, दिलीप कुमार और विजित दीवाला की फिल्म, ओपन ईयर संगीतकार शाहिर लिधियानवी, गीतकार आशा भोसले, एक बार फिर मोहम्मद रफी के साथ।

1973 की फिल्म यादों की बारात, जिन्नत अमान और धर्मेंद्र की फिल्म आर डी बर्मन के संगीत पर इस बार आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी।

और यादों के सफर के अंतर्गत आप सुन रहे थे आशा भोसले से गाए हुए कुछ चुने हुए संगीत, जिसके आखिरी नगमा आपके लिए। इसके बाद हम छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे हिट्स ऑफ 90s के साथ।

पिछले आधे घंटे तक आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए लोकप्रिय संगीत आशा भोसले से गाए हुए यादों के सफर के अंतर्गत। आपको याद रहे हम अपने प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं यादों के साथ, यानी कि चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई, हिट्स ऑफ 40s, 50s, 60s और 70s से निकाली हुई ऐसे संगीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी जाता है। संगीत की जानकारी स्टेशन पर हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। अभी थोड़ी देर में कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आकर आपके लिए पेश करेंगे दी द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। फिलहाल टू टेक अस टू कमर्शियल ब्रेक एंड कॉफी ब्रेक, हियर्स ब्रायन सालस, चौधरी कचार।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: अनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701।
1: है रेडियो 1701 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज में ठीक 12:30 बज चुके हैं ब्रिस्बेन टाइम। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आज रॉय सिंह हमारे स्टूडियोज में नहीं है, इसीलिए आपका हमारा साथ है इस सफर पर और आप है आज सू के साथ। एक और वैरायटी प्रोग्राम लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं आपके लिए, मिक्सचर सॉन्ग्स लेकर। अगर आपकी अपनी कोई फरमाइश है तो आप हमें जरूर कॉल करें 3279-1701 पर, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS जरूर कर सकते हैं। अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, कुछ भी खुशियां है आपके पास, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत से बधाइयां। इसके साथ हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि सुबह सुबह की कलियां सब खिल जाती है और हमें तो आप सभी को गलियां ही मिल जाती है। आप सभी से हमारी मुलाकात तो होती ही नहीं है, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ एक आस तो मिल जाती है ना। तो हम यही आप सभी को कहना चाहते हैं दोस्तों, सूरज की पहली किरण से लेकर चांद की आखिरी रोशनी तक आज हर पल बस आप सभी का हो। साथ में उगते सूरज की पहले किरण कह रही है, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, समेट लो खुशियों जो अपने पल के आंचल में है। आज में जियो, कल में मत जियो, यानी कि कल की बात मत करो, अपने सपनों का साकार करो। ईश्वर ने आप सभी को एक और मौका दिया है, नया दिन, नई सुबह, नई जोश, नई उमंग के साथ एक नया प्रयास करो। हैप्पी संडे।

आज सुबह का पहला गीत आप सभी के नाम जा रही है हमारी तरफ से, जो आज रेडियो विश्वानी सुन रहे हैं। यह है शाम का सफर, रेडियो विश्वानी अयाम।

0: प्यारा सर शिव भजन आपने सुना स्वरा शर्मा की आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो पिस्पानी, आपकी अपनी पहचान। दोस्तों, अगर आप रॉय के इंतजार में हैं तो आज रॉय हमारे स्टूडियोज में नहीं है, नेक्स्ट वीक वो जरूर आपके लिए आपके फेवरेट प्रोग्राम लेकर उपस्थित होंगे। फिलहाल आज आपके साथ सु रेडियो पिस्पानी आईएम पर। आप सभी को तो मालूम हो गया होगा गीत अमर अकबर एंथनी।
1: You see, the whole country of the system is
0: juxtaposition
1: of the globe and in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज।
0: ओह यस,
2: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। सभी को गीत पता है, अमिताभ बच्चन, प्रदीप पार, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम अमर अकबर एंथनी से मैंने इस गीत को लिया था। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी, आपकी अपनी पहचान। चलते हैं दोस्तों, बहुत समय नहीं लेते हुए, बहुत से लोग हैं जो अपना गीत सुनने के लिए ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले लॉस एंजलिस से हमारे पास फरमाइश है छोटी सी राया की ओर से, जिन्होंने इस गीत को ढूंढा इंटरनेट पर और सुनने के लिए बहुत बेताब है और सबसे पहले अपना नाम सुनना चाहती है। राया, चलते हैं सबसे पहले आपका नाम ही बोल देते हैं। वहाँ USA में, लॉस एंजलिस में राया है, साथ में मम्मी क्रिस्टीन, डैड रोनिल, फिर नानी और नाना है विनय और प्रेमिला। आप सभी की पसंद पर, यानी कि राया की पसंद पर सुनते हैं आज का पहला फरमाइशी गीत।

0: और झुमका की फरमाइश करने वाले थे वहाँ एल ए लॉस एंजलिस से राया, साथ में मामी क्रिस्टीन, डेड रोनिल, नानी नाना, विनय और प्रमिला हमारा प्रोग्राम सुन रहे, एंजॉय कर रही है छोटी सी राया, शी इज डांसिंग। थैंक यू सो मच राया।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0411270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 0411270035। रिमेंबर द नंबर इज 0411270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan
7: aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers, aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi, this is Salman Khan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
0: और मैं हूँ सु, रेडियो बिस्पानी। तो चलते हैं, देखे दोस्तों हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है, और किसने फरमाइश किया है? जी हाँ, फरमाइश करने वाले हैं क्रिस और विनी, जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त मरम्मा डांस में नहीं लेकिन गोल्ड कोस्ट में। क्रिस और विनी सिंह, आप दोनों के लिए एक बार फिर अगला गीत है फिल्म अमर अकबर एंथनी से ले हुआ गीत, और इस बार गीत की बोल है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। क्रिस और विनी, एंजॉय योर हॉलिडे इन गोल्ड कोस्ट।

0: बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग और बहुत ही रोमांटिक कपल हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आज गोल्डकोस्ट में, क्रिस और विनी सिंह। जो पहली ट्रैक थी थोड़ा सा उसमें रॉन्ग ट्रैक बच गई थी, विनी ने सोचा कि इस गीत को मैं ही गा रही हूँ। विनी टू टेल यू आई सिंग बेटर देन दैट। अगर आपने मेरी आवाज़ कभी सुनी है तो पहले भी मैंने रेडियो पर गीत गाए है, बट आई साउंड मच बेटर देन दैट। और चलते हैं दोस्तों अगली फरमाइश सुनते हैं, उससे पहले एक बहुत सुंदर संदेश है। और सुंदर संदेश क्या है, पत्थर तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आपकी फरमाइश पर पेश है महेंद्र कपूर की आवाज का अगला गीत।
1: फिर मुलाकात हो, क्योंकि

होते हुए नमो की फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 7 मिनट हो गए हैं 1:00। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर आपके साथ सु। आज हमारे पास एक बड़े अनाउंसमेंट आई है और वो भी है ऑल द वे फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स पोर्ट मैक्वारी से। इस बर्थडे अनाउंसमेंट को आप थोड़ी देर में सुनने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम फरमाइशी जारी रखते हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं हमेशा की तरह जिम बुम्बा में सोनिया। हाय सोनिया, क्या बात है, गीत मजा आ गया ना? तो चलते हैं, आपने एक बार फिर कल आपने सुना तो आपका अच्छी लगी और आप फिर से सुनना चाहती हैं। चलते हैं सोनिया फ्रॉम जिम बुम्बा, आपके लिए अगला गीत सुनते क्या है।

0: डेडिकेशन आई थी हमारे पास जिम्बुम्बा से सोनिया की ओर से, और सोनिया ने इस गीत को डेडिकेट किया था मकेडोन पाके जोनी और सविता के लिए। और साथ साथ में इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गई थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: फरमाइश है हमारे पास आज फिल्म से अनवर और शहरुल की ओर से। आपने फरमाइश किया है चलते चलते फिल्म पाकिजा से लेवा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग फिल्म पाकिजा से लिया हुआ गीत, जिसकी फरमाइश करने वाले थे अनवर और शहरुल फ्रॉम आज फिल्म। दोस्तों चलते हैं लेस वेगस की ओर, लेकिन उससे पहले हम क्या कहना चाहते हैं आपसे कि परेशानी जो है दोस्तों, परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि परेशानियां है तो है जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। तो चलते हैं लेस वेगस की ओर, जहां हमें सुन रही हैं दक्षा सोलंकी, साथ में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और साथ में दिनेश सोलंकी। तो चलते हैं आप सभी के लिए एक रिमिक्स पर लेटेस्ट गीत सुनते हैं।

और इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे लस वेगास दिनेश सोलंकी, दक्षा सोलंकी, जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ।

0: See this scratch?
1: तो इसकी को फरमाइश करने वाले थे रजन और मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एका सिडनी. हम दोस्तों चलते हैं अगली गीत की ओर बढ़ते हैं. हम चलते हैं वहाँ यूएसए कैलिफोर्निया यूएसए जहाँ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं मैक्स प्रसाद.

ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत सारे से फीडबैक हमारे पास आ रही है दोस्तों. थैंक यू सो मच जबीदा, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एज वेल फ्रॉम फॉरेस्ट लेक. चलते हैं हफीज भाई और जबीदा, आप दोनों के लिए अगला गीत सुनते हैं.

ब्यूटीफुल सॉन्ग एक परदेसी मेरा एक दिल ले गया। इस गीत को मैंने लिया था रिमिक्स बीच पर और जिसे फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जबीदा खान। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज के घड़ी में अब 2:45 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्मानी 1701। ऊंची उड़ान और खुला आसमान कितना है सुंदर क्यों ना हो दोस्तों, जब सुकून तो खुद जब मिलता है सुकून से भरा तो अपना छोटा सा ही बसेरा होता है। हम चलते हैं अगले गीत की ओर, हम बढ़ते हैं एक बार फिर फॉरेस्ट लेक से फरमाइश है हमारे पास मिस एंड मिसेस सेतराम की ओर से आप दोनों के लिए। अलग सा बीच पर इस गीत को मैंने लिया है, आपका फेवरेट सॉन्ग।

0: गीत का फरमाइश किया था मिस्टर मिसेस सेतराम फ्रॉम फॉरेस्ट लेक। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी 1701।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Oye Rahul,
3: Vadere kifayati rihayat di shuruaat vadere karan di uplabdhta naal hundi hai. ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇੰਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
0: चलते हैं अगली फरमाइश की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली फरमाइश करने वाले हैं जोनी और सविता फ्रॉम कैडोन पार्क। तो आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो।
4: गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, ए किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की

एक को फरमाइश किया था जोनी और सविता फ्रॉम कैड्रॉन पार्क. और इसी के साथ साथ बस तीन मिनट रह गए हमारे स्टूडियोज में, दो बजने में शाम का सफर रेडियो विस्पानी आई एम है.

0: तो इस गीत को दोस्तों मैंने लिया था ट्रिनिडाड यानी सुरीनाम एल्बम से, और आपको पता है कि बहुत सारे से डांस बीट्स पर इन्होंने गीत बनाया है इस कंपनी ने, तो मेरे पास और बहुत कुछ है इस पर, थोड़ी देर में आप सुनेंगे। लेकिन हाँ, एक और गीत सुनते हैं, उसके बाद हम लेकर आते हैं आज के बर्थडे अनाउंसमेंट।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असि 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उत्ते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

चलते हैं दोस्तों, हमारे पास एक बार फिर अगले गीत की रिक्वेस्ट है। जो गीत आपने पहले सुना है लेकिन उसे थोड़ा सा अलग है, सुनते हैं कौन सा गीत है।

गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे, यानी कि इस गीत को फरमाइश करने वाले थे ग्रीन एकर सिडनी से रजिन और मालती प्रसाद। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 12 मिनट हो गए हैं 2:00। यह है शाम का सफर रेडियो विस्फानी एम आपके साथ। सु चलते हैं वादे के मुताबिक हम लेकर आ रहे हैं आज के बर्थडे अनाउंसमेंट। बहुत देर से अपना बर्थडे सुनने के लिए इंतजार में है। हम चलते हैं ऑल द वे पोर्ट मैक्वारी न्यू साउथ वेल्स। जी हाँ, पोर्ट मैक्वारी न्यू साउथ वेल्स में शहीदा मैकविलन आज अपनी जन्मदिन मना रही है। आप अपना नंबर हमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमें तो पता है आप कितने नंबर का बर्थडे है आपका। तो चलते हैं शहीदा, आपको बहुत सारे से यहाँ से आपको प्यार और दुआएं भेज रहे आपके अब्बू है और साथ में सिस्टर रशीदा अली और उनके दो बेटे हैं अजहर और अनीस। उनके परिवार की ओर से बहुत सारे से दुआएं और प्यार है आपको। साथ साथ में डोरिन फ्रॉम कैनेडा और साथ साथ में सायरा फ्रॉम यूएसए, आयरीन एंड फैमिली फ्रॉम सिडनी और साथ में आपके बच्चे न्यू कासल से आपको याद किया है बहुत सारे से दुआओं के साथ। सिस्टर नादरा फ्रॉम टूवुम्बा और सभी दोस्तों की ओर से फ्रॉम अब्रॉड एंड यहाँ से और ओवरसीज से जहाँ भी सुन रहे हैं आपके जितने भी दोस्त हैं रिश्तेदार हैं सभी ने आपको याद किया है, बहुत सारे से प्यार और बधाई भेज रहे हैं शहीदा। और शहीदा हम भी आपको यहाँ से रेडियो विज़वानी टीम की ओर से कहते हैं हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन, आपको बहुत बहुत बधाई हो शहीदा। और यही कहना चाहते हैं कि तमन्नाओं से भरी हो आपकी ज़िंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतना खुशियां दे आपको ऊपर वाला कल के लिए। साथ साथ में आज का एक खास दिन मुबारक हो आपको शहीदा, प्यारे प्यारे ख्वाब मुबारक हो आपको, जिंदगी के साथ जो खुशियां आई है वो खुशियां की बहार भी मुबारक हो आपको शहीदा। सजती रहे खुशियां की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रेडियो विज़वानी टीम की ओर से शहीदा विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी डे, हैप्पी बर्थडे। चलते हैं आपके लिए अगला गीत बर्थडे।

हैप्पी बर्थडे टू यू शहीदा वंस अगेन। दोस्तों अगर आपने मिस कर दिया है तो शहीदा वहां पर न्यू साउथ वेल्स पोर्ट मैक्वारी में आज अपनी जन्मदिन मना रही है शहीदा वंस अगेन। आपके अब्बू ने आपको बहुत सारे से दुआएं ब्रिस्बेन से भेज रहे हैं, साथ साथ में आपकी बहन रशीदा अली, उनके फैमिली दो बेटे अजहर और अनीस की ओर से, साथ साथ में आपके भी बच्चों ने न्यूकासल से आपको याद किया है। बहुत सारे से दुआएं है, बहुत सारे से प्यार है, और साथ साथ में डोरिन फ्रॉम कनाडा से याद किया है, सायरा फ्रॉम यूएसए, आयरिन एंड फैमिली ऑल द वे फ्रॉम सिडनी से आपको बहुत सारे से प्यार भेज रहे हैं। वंस अगेन शहीदा हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे। हम चलते हैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, 8 माइल्स प्लेन्स में हमारा प्रोग्राम सुन रहे अल्पना। हाय अल्पना, चलते हैं आपके लिए अगला गीत पेश है, फिल्म है ब्लैकमेल।

आपने सुना किशोर कुमार की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग फिल्म ब्लैकमेल से लिया हुआ गीत पर्दे पर धर्मेंद्र के लिए रेडियो विश्वानी पर हमारे साथ शामिल हुई इस गीत में अल्पना फ्रॉम 8 माइल्स प्लेन्स। हम चलते हैं मेनली वेस्ट की ओर। लक्ष्मी चलते हैं आपके लिए अगला गीत सुनते हैं।

गीत रहा है, बहुत प्यारा सा गीत पर दीपा राजेश खन्ना किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। और इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गई थी लक्ष्मी फ्रॉम मेनली वेस्ट। हम चलते हैं फॉरेस्ट लेक की ओर दोस्तों। अगली कवाली की रिक्वेस्ट हमारे पास है और बहुत प्यारा सा कवाली है, सूफी एल्बम से मैंने लिया है। हमारे साथ शामिल हो गए हैं इस वक्त फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान और जाबिदा खान। भी बोल है बहुत प्यारे से उनकी बोल है, जो मजा है फकीरी में ओ अमीरी में नहीं।

0: बिल्कुल कवाली सूफी भजन आपने सुना और इस सूफी एल्बम से मैंने लिया था फरमाइश आई थी हमारे पास फॉरेस्ट लेक से, जहां मैं सुन रहे हैं हाफिज अली खान और जबीदा खान। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्फानी, आपकी अपनी पहचान।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: चलते हैं मेलबर्न की ओर दोस्तों। अब मेलबर्न से हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है, और किसने फरमाइश किया है? जी हाँ, मेलबर्न में हमारा प्रोग्राम सुन रहे विजय शर्मा और पिंगला शर्मा, आप दोनों के लिए अगला गीत।

में हमारे साथ शामिल हुए थे विजय शर्मा पिंगला शर्मा फ्रॉम मेलबर्न. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी 17.1 किलोहर्ट्ज़ पर. दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज की घड़ी कहती है ब्रिस्बेन टाइम 3:15 बज चुके हैं. शाम का सफर है और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं. थैंक यू सो मच. हम चलते हैं फिजी की ओर लटोका. फिजी में अभी भी रोहित तेज जो कैलिफोर्निया यूएसए से है हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त लटोका में हमें सुन रहे हैं. ही इज गॉट मुझे बताया गया है अनदर वीक टू गो बैक होम. चलते हैं आपकी फरमाइश पर. एंजॉय योर हॉलीडे व्हाट एवर यू गॉट रोहित तेज. चलते हैं आपकी फरमाइश पर. सुनते हैं अगला गजल ब्यूटीफुल गजल.

कैलिफोर्निया यूएसए के रोहितेश की पसंद पर आपने इस गीत को सुना जो इस वक्त हमें लोटो काफी जी में सुन रहे हैं। रोहितेश, एंजॉय योर हॉलीडे।

चलते हैं दोस्तों गोल्ड कोस्ट की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं क्रिस और विनी सिंह। वैसे मरम्बा डांस में रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमें गोल्ड कोस्ट में सुन रहे हैं। एंजॉय योर हॉलीडे क्रिस एंड विनी सिंह। आप दोनों के लिए अगला गीत, सो बी रेडी फॉर योर डांस।

और इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे क्रिस अबिनी सिंह फ्रॉम गोल्ड कोस्ट. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701. आपके साथ सू चलते हैं मेलबर्न की ओर बढ़ते हैं. दोस्तों मेलबर्न से हमारे पास फरमाइश है एल्फ्रेड और किरण प्रसाद की ओर से.

0: बहुत प्यारा संगीत दोस्तों, मेलबर्न से फरमाइश आई थी हमारे पास एल्फ्रेड और किरण प्रसाद की ओर से। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी।
1: शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

चले एक बार फिर हम चलते हैं दोस्तों ग्रीन एकर सिडनी की और शायद वहां पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे रजन मालती प्रसाद, उन्होंने अपना गीत सुनने में मिस कर दिए हैं, तो चलते हैं एक और गीत सुनना चाहते हैं आप दोनों के लिए अगला गीत रजन मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एकर सिडनी।

तो ग्रीन एकर सिडनी से हमारे पास एक बार फिर इस गीत की फरमाइश आई थी जहां हमें सुन रहे रजिन और मालती प्रसाद. हम चलते हैं 8 Miles Plains की ओर. वंस अगेन अल्पना हमारे साथ शामिल हो गई है. अल्पना, चलते हैं आपकी फरमाइश पर स्लम डॉग मिलेनिया से लिया हुआ गीत सुनते हैं.

गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें थी अल्पना की ओर से, जो हमें सुन रही हैं 8 Miles Plains में। हम चलते हैं शिकागो की ओर, अमला सिंह की पसंद पर सुनते हैं अगला, मेरे ख्याल से गजल गीत है।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: दिल दे अंधेरियां विच अज एक

0: और देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है, क्या आपको पता है? ना सोने की चमक, ना नोटों की गाड़ियाँ। असल दौलत है आपका स्वास्थ्य, यानी आपका शरीर, शांत मन और कुछ अपने सच्चे लोग। बाकी सब तो वक्त के साथ आता जाता रहता है। और साथ साथ में कोई खुशियाँ की चाह में रोया है, तो कोई दुखों की पनाह में रोया है। अजीब सिलसिला है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, तो कोई भरोसा करके रोया। तो चलते हैं दोस्तों, एक और हम सूफी कवाली सुनते हैं। बहुत प्यारा से कवाली है और इसकी बोल है, मुझको शराबी बना दिया।
1: जब तेरी आंखें ही जाम है, हम तो बिन पी

दोस्तों चलते हैं बैंक्सटाउन सिडनी की और बैंक्सटाउन सिडनी से हमारे पास फरमाइश है अगला गीत के लिए सनी और रामिजा की ओर से आप दोनों के लिए अगला गीत डांस बीच पर

बिल्कुल सॉन्ग बिल्कुल रिमिक्स बीच पर आपने सुना दीदी तेरा देवर दीवाना, फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन, जिसे फरमाइश करने वाले थे सनी और अमीजा फ्रॉम बैंक्सटाउन सिडनी। उलझनों का बोझ दिल से उतार दो दोस्तों, बहुत छोटी सी जिंदगी हंस के से गुजार दो। आत्मा और दिमाग से संतोष का ही दूसरा नाम स्वर्ग होता है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल आशियाने, किसी ने दिल में जगह दी तो किसी ने रहना सिखा दिया। चलते हैं अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। जी बंक से फरमाइश है हमारे पास टॉम मनीराम की ओर से आपके लिए, अगला गीत आपकी फरमाइश पर सुनते हैं।

कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे

हाँ दोस्तों, इस गीत की फरमाइश आई थी हमारे पास जीबंग से, जहाँ हमें सुन रहे हैं टॉम मनीराम। हम चलते हैं अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर हमारे पास फरमाइश आई है, और इस बार फरमाइश कहाँ से आई है? जी हाँ, केड्रोन पार्क से, जोनी और सविता की ओर से, और खास करके जो फरमाइश जोनी की पसंद पर है, सुनते हैं। पर और इस गीत को हमने इस कवाली को लिया है सूफी एल्बम से।

0: उसी को फरमाइश किया था जोनी और सबिता फ्रॉम कैडरन पार्क. आप सुन रहे हैं रेडियो पिस्पानी दोस्तों. एक्सक्यूज मी, चलते हैं अगला गीत की ओर बढ़ते हैं. हम गर्ल्स की ओर बढ़ते हैं वहीकल, और वहीकल में हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं सालिक राम और मृदुला राम. आप दोनों के लिए, आपने कहा चटनी गाना बहुत अच्छी लगी ना, चलते हैं आपके लिए थोड़ा सा चटनी लाते हैं.
1: एमजी गाड़ी में रखी गई, और मजे की बात ये है ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका.

फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, ब्यूटीफुल सॉन्ग फिल्म धमाल फो से लिया हुआ गीत, और जिसकी फरमाइश करने वाले थे वहाँ वहीकल, ये वहीकल से सालिक राम और मृदुला राम। उन्हें चटनी गाना बहुत अच्छी लगती है, तो आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग। हम चलते हैं ए ग्रीन बैंक की, और दोस्तों ग्रीन बैंक से हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है रजेन राम और पुष्पा राम की ओर से। साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 4 बज चुके हैं।

0: रहेंगे।
1: और ग्रीन बैंक से हमारे पास इस गीत के लिए फरमाइश थी रजिन राम और पुष्पा राम की ओर से।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
5: Containers for Change ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

0: चले देखे दोस्तों, अगला गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है और फरमाइश करने वाले हैं रेड बैंक से गंगा और गीता,
1: सुख
0: प्रेम रतन धन पायो का टाइटल सॉन्ग।

और इसी के साथ साथ बस 25 मिनट होने वाले हैं हमारे स्टूडियोज में 4 बजकर, ये शाम का सफर है। और देखें कि घड़ी भले ही पुरानी हो जाए लेकिन उसकी अहमियत जो है कम नहीं होती। उसी तरह जो बुजुर्ग लोग भी ये होते हैं दोस्तों, अनुभव का खजाना होते हैं, उनकी बातें और सीख जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है।

गीत के साथ साथ दोस्तों हम आपसे यही पर इजाजत ले रहे हैं। हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे को 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर, और याद रखिएगा ठीक 5 बजे से आपके साथ हो जाएगी शशि चौहान, साथ उनका जरूर दीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

और माफ कीजिएगा दोस्तों, चलते चलते अपोलॉजी हियर. जैसे मैंने पहले कहा है कि 5 o'clock से आपका साथ होता है शशि का साथ, लेकिन आज किसी कारण आज शशि जी का साथ आपका नहीं होगा, तो आज शशि का प्रोग्राम नहीं होने वाला है. तो आप शशि का प्रोग्राम का इंतजार मत कीजिएगा. इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि हमने रॉन्ग अनाउंसमेंट किया था. तो अभी हमारे जतीश भाई का कहना है कि आज शशि का प्रोग्राम नहीं होगी. और याद रखिए, हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे को 1 PM से. नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत, जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: The Total Focus Group Australian International Masters 2026 hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सत्य को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए

ना बदला मैं, ना बदला वो, ना बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम।

आदाब खैर मकदम, रेडियो प्रसवानी पर एक बार फिर से आ गई है सताक्षी आपकी फरमाइशों के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये सफर है आपकी फरमाइशों का, यानी उन गानों का जो आपने हमें रिक्वेस्ट किए हैं। आज कई ऐसे खूबसूरत गाने हैं जिन्हें हम सजा कर लाए हैं आपकी रिक्वेस्ट पर। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और इस ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जरा देखते हैं कि आज की पहली फरमाइश किसकी लेने जा रहे हैं, कौन है वो जो आज आपकी फरमाइशों का हिस्सा बने हैं। सुनते रहिए मेरे साथ फरमाइशी गीत ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी 1701 FM।

तो चलिए भी देखते हैं कि आज की पहली मेल हम किसकी लेने जा रहे हैं। आज की पहली मेल है ब्रिस्बेन से परमानंद की। परमानंद कहते हैं कि सताक्षी में मोहम्मद रफी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मोहम्मद रफी के सभी गाने मुझे आज भी अच्छे लगते हैं, मैं सुनना पसंद करता हूँ। तो अगर आप मोहम्मद रफी साहब का वो गाना काला बाजार फिल्म का खोया खोया चांद प्ले कर देंगी तो मजा आ जाएगा। प्लीज ये गाना अगर आपके पास हो तो प्ले कीजिएगा। परमानंद जी, रफी साहब के सिर्फ आप नहीं भाई, हम सब बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, रफी साहब शख्सियत ही ऐसी थे। और आप सुनना चाहते हैं रफी साहब की आवाज में खोया खोया चांद काला बाजार से, आपके लिए पेशे खिदमत है ये गाना, इंजॉय कीजिए। देवानंद साहब स्क्रीन पर हैं, रफी साहब बैकग्राउंड में, उनकी आवाज बने हैं, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। शैलेंद्र साहब ने इस गाने को अपने मोतियों से, शब्दों के मोतियों से पिरोया है। तो इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: फरमाइशे गीत, आपकी फरमाइशों का ये लाजवाब सफर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर, और इस सफर में आपका साथ दे रही है आपकी सताक्षी। वेल, अगर आपने अभी तक हमें नहीं बताया है कि कौन सी फरमाइशें हैं जिन्होंने आपके दिलों पर राज करा है, वो कौन से गाने हैं जिन्हें आप यहाँ पर हमारे साथ सुनना चाहते हैं, तो बस जल्द से जल्द हमें लिख भेजिए हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। आइए फिलहाल एक अगली फरमाइश के साथ अभी आगे बढ़ रही हूँ, इसे भी सुनिए और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी 1701।

दोस्तों मेलबर्न से आई है मेरे पास अगली रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट है शिखा की। शिखा कहती है कि सताक्षी, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ और सिंप्लिसिटी के साथ ही अभी तक रहती आई हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गाना डेडिकेट किया था, उन्होंने मेरे लिए गाया था शादी के रिसेप्शन में, ना कजरे की धार। और ये गाना हम दोनों को आज भी बहुत पसंद है और हम साथ में सुनते हैं, तो प्लीज आज ये गाना मेरे लिए प्ले कीजिएगा, तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। शिखा, जरूर प्ले करेंगे हम आपके लिए ये गाना, और बहुत ही खूबसूरत सी बात है। कहते हैं ना कि असली ब्यूटी तो नेचुरल ब्यूटी होती है। ना कजरे की धार आप सुनना चाहती हैं, आपको और आपके हस्बैंड दोनों को हम डेडिकेट करेंगे। साधना सरगम और पंकज उदास की आवाज में है ये गाना, मोहरा फिल्म का 1994 में आई गेस ये फिल्म रिलीज हुई थी, और सुनील शेट्टी ने इस गाने में परफॉर्म किया था। कल म्यूजिक डायरेक्टर हैं विजू शाह और लिरिक्स हैं इस गाने के इंदिवर के। तो चलिए ना कजरे की धार खास आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, इसे सुनिए और हमें यूं ही सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: रेडियो बरसवानी 1701 AM पर आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत। आपकी फरमाइशों का ये खास सफर जिसे हमने बड़े ही प्यार से संजोया है आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये फरमाइशें आपको जरूर अच्छी लग रही होंगी। एक अगले गाने के साथ अभी आगे बढ़ रही है, उसके बाद देखते हैं जरा कि अगली फरमाइश हम किसके लेने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, रेडियो बरसवानी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

अगला जो मैसेज हमें मिला है वो है शालिनी का, और आपने हमें लिखा है बैंगलोर इंडिया से। शालिनी कहती हैं कि सताक्षी, मेरी शादी होने जा रही है और इसके बाद मैं ब्रिस्बेन शिफ्ट हो जाऊंगी, मेरे हस्बैंड वहीं पर हैं। इंडिया से ब्रिस्बेन तक का सफर अब तय करना है और बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं, बट स्टिल एक खुशी है। और पता नहीं, घर वालों से तो नहीं कह पाती हूँ, लेकिन एक गाना जो है वो जरूर मुझे हमेशा याद आता है और मैं उसे अपनी फीलिंग्स के साथ यहाँ पर सुनना चाहती हूँ, रेडियो ब्रिस्बानी पर सुनना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिएगा। आप सुनना चाहती हैं, मैं बता दूं श्रोता हूँ आपको, फिल्म खलनायक से पालकी में होके सवार चली रे। सबसे पहले तो आपको आपकी शादी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और ऐसा होता है कि बहुत सारी फीलिंग्स अपने अपनों के साथ नहीं बांट पाते, नहीं शेयर कर पाते हैं, बट फीलिंग्स हैं तो हैं और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स है। सो जरूर इस फेज को एंजॉय कीजिए और पालकी में होके सवार चली रे गाना मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगी, आपके और आपके होने वाले हस्बैंड के नाम। ये गाना है अलका याग्निक की आवाज में और खूबसूरत माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंस है। फिल्म खलनायक से ये ट्रैक, जिसे कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल हैं आनंद बख्शी के। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, खलनायक से माधुरी दीक्षित जितनी खूबसूरत लगी है, हमें उम्मीद है कि आपकी जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ, आप सबको डेडिकेटेड है ये गाना, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: दोस्तों, ये सफर है आपकी फरमाइशों का। जी हाँ, फरमाइशी गीत इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्मानी 1701 AM पर, और आपकी फरमाइशों के साथ हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं वो गाने जो आपने हमें रिक्वेस्ट किए। वैसे रिक्वेस्ट किए तो है ना, मैं जानती हूँ कुछ लिसनर्स ऐसे हैं जो बस सोचते रहते हैं कि अपने गाने को किस तरह से रेडियो प्रस्मानी पर प्ले करवाएं। तो अगर अभी तक सोच रहे हैं तो बस जल्दी से, हाँ, फरमाइशी गीत इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्मानी 1701 AM पर, और आपकी फरमाइशों के साथ हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं वो गाने जो आपने हमें रिक्वेस्ट किए। वैसे रिक्वेस्ट किए तो है ना, मैं जानती हूँ कुछ लिसनर्स ऐसे हैं जो बस सोचते रहते हैं कि अपने गाने को किस तरह से रेडियो प्रस्मानी पर प्ले करवाएं। तो अगर अभी तक सोच रहे हैं तो बस जल्दी से हमें मेल कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि वो

क्रिस्वानी 1701 एम पर फरमाइशी गीतों का सफर, जिसे आप सब एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। आपकी फरमाइशों को इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं और यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। मेरे पास अगली जो मेल है, जो अगला मैसेज मुझे मिला है, जो अगली फरमाइश मुझे मिली है, वो है कृति सचदेवा की। और कृति आपने में कहाँ से लिखा है ये आपने नहीं बताया। कृति लिखती है, इनका मैसेज मैं जरूर पढ़ूंगी आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। कृति लिखती है कि मेरे हस्बैंड बाहर सेटल्ड हैं काम के सिलसिले में, और पारिवारिक जिम्मेदारी है जिनके चलते मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है, उनसे दूर रहना पड़ रहा है। तो हम दोनों के बीच एक फासलों की दूरी जरूर है, लेकिन ये फासले दिल के नहीं है। और जब भी ये गाना सुनती हूँ तो मुझे अक्सर उनकी याद आ जाती है, और वही गाना इस वक्त मैं सुनना चाहती हूँ। और मैं उनसे भी कहूंगी कि जरूर सुने, तो ऐसा लगेगा कि हम दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। कृति, बहुत ही खूबसूरत गाना एक तो आपने डिमांड किया, और दूसरे जिम्मेदारियां अगर आप निभाते हैं तो इससे खूबसूरत बात और कुछ हो नहीं सकती है। शादी तो सब करते हैं, लेकिन शादी के बाद की जिम्मेदारियों से अक्सर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपने ऐसा नहीं किया है और आप निभा रही हैं, और बस उम्मीद करते हैं कि आपके हस्बैंड भी जल्द से जल्द आपके पास हो। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, ये गाना आपने सुनना चाहा है। फिल्म दो बदन का है ये गाना, आशा जी की, आशाताई की आवाज में है, आशा भोसले की आवाज में है, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने। तो चलिए एंजॉय कीजिए अब इस ट्रैक को, और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो प्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत, और कनेक्टेड रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस अगले ट्रैक के साथ और इसके उस पार भी।

नमस्कार, आदाब। ढलती हुई शाम कुछ ख्याल ले आती है और बस उन्हीं ख्यालात के साथ रात गुजरती है। सामीन, जब भी आपका ख्याल आता है, मेरा दिल यही कहता है कि वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, हम तो तुम्हारे ख्यालों से ही महक जाते हैं। आपसे मुलाकात का समय तय है और हाजिर है गजलों का कारवां लेकर आपका रेडियो हम सफर। निलय प्रोग्राम है कारवां गजल और आपने ट्यून इन किया है रेडियो ब्रिस्वानी। साज तैयार हैं, सुर सजे हुए हैं, तो आगाज करते हैं महफिल का। अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अभी तो पी नहीं फिर भी कदम क्यों डगमगाते हैं, जरा अंदाज तो देखो न है तलवार हाथों में, हमारा दिल ज़बह कर खून से मेहंदी रचाते हैं। हमें मंजूर है गर गैर से भी प्यार हो जाए, कम अज कम सीख जाएंगे कि दिल कैसे लगाते हैं। सुना है आज वो हमसे खफा हैं, बेरुखी भी है, नजर से नजर हर बार क्यों हमसे मिलाते हैं।

कुछ यूं लगता है तेरे साथ ही गुजारा वो भी, हमने जो वक्त तेरे साथ गुजारा ही नहीं। जब ये अशआर पढ़ते हैं तो इन्हीं के साथ गालिब का अंदाज भी याद आ जाता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कहने को बात एक सी होती है, अंदाज बदल जाते हैं। मुझे लगता है जिंदगी हर किसी को दिल की मोहब्बत से नवाजती है, आपको भी नवाजा होगा। मोहब्बत ख्यालों को खूबसूरत बनाती है, आपको है कि नहीं? वो नजर देती है जिससे वादियां खूबसूरत लगने लगती हैं। हर वो बात जो दिलबर से जुड़ी हो वो दिलकश लगने लगती है। निलय के साथ हैं आप कारवाएं गजल की शमाए रोशनी से, दिल आबाद रखिएगा और सुनते रहेगा कारवाएं गजल। अजब हाल अपना होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। न मजा है दुश्मनी में न लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता कोई यार यार होता। ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, न तुम्हें करार होता न हमें करार होता। तेरे वादे पे सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी का हमें एतबार होता।

नमस्कार आदाब, एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर, निलय है मेरा नाम। दिल की बात को जाहिर करना चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर लोगों में बड़ी कश्मकश होती है। दिल की बात कही नहीं जाती एक अजीब से डर की वजह से कि कहीं दिल की मोहब्बत को कोई ठुकरा ना दे, ना कह दे। पर हुजूर, इतना आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, है ना। दूर भले वो हो जाए लेकिन दिल से उसे निकाल पाना आई थिंक नामुमकिन ही होता है। इसी ख्याल के साथ निदा फाजली साहब की बात एकदम सही लगती है कि तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। अपना सोचा हुआ नहीं होता, वरना होने को क्या नहीं होता। उसकी आदत फकीर जैसी है, कुछ भी कह लो खफा नहीं होता। न मसलते यूं संग दिल इसको, दिल अगर फूल सा नहीं होता। याद आते न शबनमी लम्हे, जख्म कोई हरा नहीं होता। ख्वाब में होती है फकत मंजिल, पर कोई रास्ता नहीं होता। इश्क बस एक बार होता है, फिर कभी हौसला नहीं होता। हद से गुजरे हजार बार भले, हद से गुजरे हजार बार भले, दर्द फिर भी दवा नहीं होता। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्वानी पर गजलों का कारवां, कारवां गजल। इस कारवां को आगे बढ़ाते इन नगमों और गजलों के साथ।

अजब दिन थे कि इन आंखों में कोई ख्वाब रहता था, कभी हासिल हमें खसखाना और बर्फाब रहता था। उभरना डूबना अब कश्तियों का हम कहां देखें, वो दरिया क्या हुआ जिसमें सदा गिरदाब रहता था। वो सूरज सो गया है बर्फजारों में कहीं जाकर, धड़कता रात दिन जिससे दिले बेताब रहता था। निलय के साथ हैं आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसी का कहलाता हूं मैं। जब कोई किसी से दिल से मोहब्बत करता है ना, तो जैसे दो रूह एक हो जाती हैं। रस्म उल्फत निभाना इतना भी आसान नहीं होता, जमाने की बनाई दीवारों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जनाब मोहब्बत का एक और नाम है दीवानगी, जो इस कदर सर चढ़कर बोलती है कि उन्हीं लम्हों को ताजा किया करता है दिल जो साथ गुजारे थे। आज भी वही पहचान सही लगती है जो उसके नाम के साथ जुड़ी हो। हमारी पहचान है मोहब्बत, जो दिल से दिल को जोड़कर रखती है। जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, जो दरिया गर्मियों की धूप में पायाब रहता था। मुफलिसी में ख्याल अब हमसे कोई वादा वफा नहीं होता।

मोहब्बत और दोस्ती कहीं ना कहीं एक ही राह की ओर चलने वाले दो मुसाफिरों की तरह होते हैं। वो मुसाफिर जो साथ होते हुए भी कई बार नजरें चुरा लेते हैं। दोस्त अगर बरसों बाद मिले तो नजरें मिलाकर दिल का हाल बयां कर देते हैं, वहीं मोहब्बत अगर बरसों बाद मिले तो नजरें चुरा कर उसके खो जाने का एहसास करा देती है। इसीलिए हुजूर निले आपसे कह रहा है कि दोस्त हो या मोहब्बत, दिल में संभाल कर रखिए, नजरें चुरा कर नहीं नजरें मिलाकर मिलिएगा। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी तो नहीं कि शायरी वो ही करे जो इश्क में हो, जिंदगी भी कुछ जख्म बेमिसाल दिया करती है। सदर एक आरमाई गजल रेडियो में सफर निलय के साथ, दिल पर हाथ रखिए और अपनी मुस्कान को बरकरार रखिए। पेश खिदमत है अगली गजल आपके लिए। अजब एक शोर सा बरपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ अब से पहले भी हो चुका है कहीं, जो यहां से कहीं न जाता था वो यहां से चला गया है कहीं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढ।

हकीकत है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। एक उम्मीद रहती है कि अनजाने में ही वक्त कई बार सब कुछ बेहतर कर देगा। वक्त जाते हुए किसी को दिखता नहीं। बीता वक्त कितनी सारी यादें समेटे हुए होता है, जिंदगी के लम्हे समाये हुए होता है, और हम इसी उम्मीद में वक्त गुजारते हैं कि वक्त के सहारे हम इस दर्द को सह ही जाएंगे। हवाएं बहती हैं और ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छुआ है, और फिर वो छुपाया हुआ दर्द आंखों की नमी में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सामने का नजारा कब धुंधला हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये तीर दिल में मगर बेसबब नहीं उतरा, कोई तो हर्फ लबे चरागार से निकला था। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया, कि दिल का दर्द मेरे चश्मे तर से निकला था। वो कैसे अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, वो कैसे अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, मेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। रेडियो बिस्वानी पर सुनते रहिए।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Yeah. Caravan.

वेलकम बैक ख्वातिनो हजरात। एक ख्याल आपसे बांटना चाहूंगा कि दुनिया की इस भीड़ में अपनी पहचान बहुत जरूरी है भाई। छोटी ही हो अपनी पहचान, लेकिन वो होती अपनी ही है। किसी के साए में उम्र गुजार देना आसान जरूर होता है। हर शख्स को कोशिश करना चाहिए कि दुनिया की भीड़ में उसका भी अपना एक नाम हो। कुछ लोगों के ही सही, पर दिलों पर उसका भी नाम हो। और जब कोशिशों के बाद अपनी पहचान बन जाती है, तब वो खुशी, वो एहसास, वो जज्बा, वो सब कुछ मिल जाता है जिसे बयां कर पाना भी मुश्किल होता है। पर जनाब संभल कर, क्योंकि हम कई बार नाम को बड़ा करने के लिए जब सहारे की तलाश करते हैं ना, तब इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया से समंदर मिले, दरिया नहीं रहता। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर कारवाई गजल निले के साथ। आपके इस शहर में गुजारा नहीं, अजनबी को कहीं पर सहारा नहीं। बह गया मैं अगर तो बुरा क्या हुआ, खींच लेती किसे तेज धारा नहीं। आरजू में जन्म भर खड़ा मैं रहा, आपने ही कभी तो पुकारा नहीं। हाथ मैंने बढ़ाया किया बारहा, हाथ मैंने बढ़ाया किया बारहा, आपको साथ मेरा गवारा नहीं। कभी

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम।
1: दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आप जो भी काम कर लीजिए उनको आप खुश नहीं कर सकते। नुक्स निकालते हैं वो, और नुक्स निकालना उनकी आदत में शुमार होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर होता है भाई। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जान से भी अजीज समझते हैं, पर वक्त बदलते ही वो भी ऐसे बदल जाते हैं मानो कभी हाथ में हाथ था ही नहीं। ऐसे मिलते हैं जैसे कभी हम सफर थे ही नहीं, कभी हम भी इस कदर करीब थे, दिलो जान से बढ़कर अजीज थे, मगर आज ऐसे मिला है वो कभी पहले जैसे मिला ना हो। सारी उम्मीदें, वादे, वफा जैसे सिर्फ नाम के थे। कभी तो चौंक के देखे वो हमारी तरफ, किसी की आंख में हमें भी इंतजार तो दिखे। तभी एक और दिल ये भी कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अजीब बात है, खुद से नजर चुराता है मगर वो दूसरों को आईना दिखाता है। जो कल तलक मेरी उंगली पकड़ के चलता था वो शख्स आज मुझे रास्ता दिखाता है। उसे खबर है कि बन जाएगी मेरी जां पर, मगर वो फिर भी मेरा जर्फ आजमाता है। बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, नसीब आज हंसाता है कल रुलाता।

जरा सी बात का मलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहां मोहब्बत है। कितनी सही बात है ना ये। बाकी जहां मोहब्बत होती है वहीं उम्मीद भी होती है, और इसीलिए शिकायतें भी होंगी ही। लेकिन हुजूर, ज्यादा उम्मीदी भी बड़ी गलत है, क्योंकि इससे रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतने ही नुकसान में रहेंगे। कई बार बात को रखने के लिए यूं ही हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन सोचिए, क्या ये सही है? बनावटी रिश्तों को बनाए रखना ना उम्मीदी को बुलावा देने जैसा है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आपका और मेरा रिश्ता ना झूठे वादे पर टिका है और ना किसी उम्मीद पर। आपका और मेरा दिल से दिल का नाता यूं ही नहीं बना है। इसी एतमाद और यकीन के साथ अगली गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं, सुनिए। अदाए हैरते आईना गर भी रखते हैं, हमें न छेड़ के अब तक नजर भी रखते हैं। न गिर्दो पेश से इस दर्जा बेनियाज गुजर, जो बेखबर से हैं सबके खबर भी रखते हैं। कफस को खोल मगर इतना सोच ले सयाद, बहुत असीर तेरे बालों पर भी रखते हैं। फरिश्ता है तो तकद्दस तुझे मुबारक हो, हम आदमी हैं तो ऐबो हुनर भी रखते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कारवाई गजल निले के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उन हरफों का जरिया बनाकर शायर कितने ही सारे ख्याल हमारे दिलो दिमाग में उतार देता है। शब्द कहिए या कई बार रंग कहिए, सब जैसे बोलते हैं हमसे, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं वो। बस उनकी भाषा समझनी जरूरी है, उनके अंदाज को अपनाना जरूरी है। लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, बस कुछ देर और ठहर कर उठ जाना है। मैं निले हूं, थोड़ी देर और आपके साथ। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्वानी पर कारवाई गजल, सुनते रहिए। अपनी आंखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहलीज की मिट्टी थी उठा के रख ली, तुझको तकते ही रहे रात बहुत देर तलक, चांद की ताक में तस्वीर सजा के रख ली, दिल सी नौखेज कली तेरी मोहब्बत के लिए, सींच के जज्बों से पहलू में खिला के रख ली, इस नए साल के स्वागत के लिए पहले से हमने पोशाक उदासी की सिला के रख ली, दम उलझता था शबे तीरा का तारीखी से, इसलिए चांद की कंदील जला के रख ली।

जब दो लोग प्यार में एक साथ रहते हैं तो आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। वक्त आने पर ना आदत छूटती है और ना प्यार। वेलकम बैक, मैं हूं नीलम आपके साथ और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। प्यार भी तो आदत की तरह होता है, कुछ रिश्ते भी तो आदत बन जाते हैं, ऐसी आदत जिनको बदल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ना कोई छोड़ रहा है ना कोई खींचता है, मैं अपने आप बहे जाता हूं नदी की तरह, न डूबता हूं न रुकता हूं न सूखता हूं, उस एक शख्स को तलाशते हुए, उस आदत को संभाले हुए एक उम्र सी गुजर जाती है, रेत पर उसके पैरों की मोहरों को तकते हुए एक उम्र सी गुजर जाती है। चलिए सुनते रहिए कारवां गजल, इस महफिल को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त बस हो ही चला है, आप तो बस बने रहेगा हमारे साथ। अजब मौसम है मेरे हर कदम पे फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है, मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, तुम्हें आंखें बताएंगी दिलों में कौन जलता है, मोहब्बत गम की बारिश है जमीन सरसब्ज होती है, मोहब्बत गम की बारिश है जमीन सरसब्ज होती है, बहुत से फूल खिलते हैं जहां बादल।

कहते हैं ना कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त की बात माननी पड़ती है भाई। और ये दस्तूर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है, लेकिन इस जुदाई में भी साथ रहेगी आपकी यादों की खुशबू। जो वक्त आपने मेरे साथ गुजारा, मैंने जो आपके साथ गुजारा है, उसे याद करते करते हम अगले हफ्ते फिर मिलने आ जाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद कर लिया कीजिएगा, और हाँ, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो बृजवाणी, इन्हीं बातों के साथ गजलों का एक कारवां अपनी मंजिल तक आ पहुंचा। तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले संडे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जाते जाते कुछ कह देता हूँ आपके लिए, अपनी जुल्फों को सितारों के हवाले कर दो, शहरे गुल बादा गुसारों के हवाले कर दो, तलखिए होश हो या मस्तिए इदरा के जुनू, तलखिए होश हो या मस्तिए इदरा के जुनू, आज हर चीज बहारों के हवाले कर दो, मुझको यारों न करो रहनुमाओं के सुपुर्द, मुझको तुम रह गुजारों के हवाले कर दो, जागने वाले का तूफान से कर दो रिश्ता, जागने वालों का तूफान से कर दो रिश्ता, सोने वालों को किनारों के हवाले कर दो। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, नमस्कार, टेक केयर।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.com

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनेहा क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

ना बदला में ना बदला।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Samsung ki mala pe sim room hai. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में. बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: तुम जीत गए।
2: हम जीत गए।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

जीवन का सत्य अमिट है, और जीवन का सत्य ये है कि जब तक आपकी सांसें हैं तभी तक आपकी पहचान है। एक बार आपकी सांसें मिट गई तो ये पहचान भी मिट जाएगी। तो चलिए आज एक नई सुबह जब हमें मिली है तो इस सांसों को देने वाले को ये वक्त है शुक्रिया कहने का, धन्यवाद देने का, और उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस जीसस, उस वाहे गुरु का ध्यान करने का। आइए इसी ध्यान में डूबते हैं आज एक बार फिर से जीवन आधार के साथ। बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सहनशीलता मनुष्य का गुण है। हम सब में सहनशीलता की शक्ति होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर अगर आप जीवन में कुछ भी सहन करते हैं श्रोताओं, तो ये आपके लिए पीड़ादायक है और ये आपके जीवन का अपमान है। इसलिए सहनशीलता की शक्ति का प्रयोग तभी तक करें जब तक आपके आत्मसम्मान को ठेस ना लगे। अगर आपके सहन शक्ति का प्रयोग करने से या सहनशील रहने से आपका आत्मसम्मान आपका नहीं रहता है, तो फिर ये आपके आत्मसम्मान का अपमान है, आपके जीवन का अपमान है और वहां पर आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण की इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और गीत को सुनते हैं। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

सुबह के अमूल्य विचार जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। अपने इन विचारों के साथ साथ कुछ ऐसे गीतों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे जीवन को भी शुद्ध कर रहे हैं और जीवन का सही पर्याय हमें बता रहे हैं। एक ऐसे ही गीत के साथ अभी बढ़ूंगी आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

एकांत एकांत हम सबके जीवन में अति आवश्यक है श्रोताओं, लेकिन इसी एकांत से हम आज भाग रहे हैं। हम आज भीड़ ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे वो आपके फोन के जरिए हो या लोगों के जरिए। आप हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं, लोगों का साथ चाहते हैं, और इसीलिए आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इंसान ही है जो आपको मनुष्य बनाता है, वरना भीड़ में आप भीड़ बन जाते हैं। जिस ओर सब चलते हैं उसी ओर आप चलते हैं। आपके मन की एकाग्रता आपको सही रास्ते पर लेकर जाती है, इसलिए कुछ देर, कम से कम आज के व्यस्त जीवन में कुछ देर एकांत में गुजारने अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप खुद को समझ सकें, अपने सपनों को, अपने आप को समझ सकें। इसी एकांतवास के नाम ये अगला गीत सुनते रहिए सताक्षी के साथ, जीवन आधार।

जीवन के आधार को कुछ अमूल्य विचारों के जरिए हम आज एक बार फिर से जानने की कोशिश कर रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। और श्रोताओं, अभी हम आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

आप चाहे किसी भी धर्म में माने, लेकिन जीवन का एक सत्य आप किसी भी धर्म को मानकर नहीं बदल सकते कि अपना जीवन अगर कोई बदल सकता है, आपका जीवन अगर कोई बदल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके अलावा आपका जीवन और कोई भी नहीं बदल सकता। और उस बदलाव में ना तो ईश्वर इंटरफेयर करता है, ना खुदा, ना जीजस। सबका एक ही बात तो है कहना कि अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपका जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। इसीलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए ताकि जीवन की खुशियां हमेशा बरकरार रहें। आइए इसी बात पर एक और गीत को सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार, और शताक्षी के साथ अच्छे कर्मों की ओर आइए बढ़ते हुए ये गीत सुनते हैं।

सुबह के कुछ ऐसे विचार जो आपका जीवन बदल दें, उन्हीं विचारों को आज आप एक बार फिर से सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इस सफर में आपकी हम सफर सताक्षी आज एक बार फिर से आपके साथ है। आगे बढ़ूंगी एक और गीत के साथ, सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

था जीवन के एक अटूट सत्य की, जीवन किसी से बंधा नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति से नहीं, भले ही वो आपके कितना भी क्लोज हो, आपका कितना भी अपना हो। हर एक शरीर के साथ, हर एक मानव की मानव के साथ सिर्फ भावनाएं बंधी होती हैं, यही सत्य है। भावनाएं हैं जो हमें एक दूसरे के साथ बांध के रखती हैं, एक दूसरे का अपना बना के रखती हैं। वरना यथार्थ तो ये है कि हम सब इस जीवन में अपनी कर्म भूमि में अपने कर्मों को अदा करने के लिए आए हैं, और उसके बाद हम सब आत्माएं परमात्मा में या तो विलीन होंगी या फिर एक बार फिर से जन्म लेकर अपने कार्यकाल को पूरा करने इस पृथ्वी पर उतर आएंगी। है ना ये सच? आइए इसी सच के नाम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधा।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन आधार का सफर रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, जिसे सताक्षी आज आपके लिए लेकर आई थी। इसी सफर में मेरी आपसे कल एक बार फिर से जरूर मुलाकात होगी। जीवन आधार कल सुनना मत भूलिएगा। और आज के सफर से अब लूंगी

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस में हीटवेव के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, तापमान 45 डिग्री के पार। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी की लहर के दौरान उम्मीद से लगभग 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस हीटवेव ने पिछले कई दिनों से पश्चिम

यूरोप के बड़े हिस्से को झुलसा दिया है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस ने एक बयान में कहा कि 24 जून के बाद से पिछले महीनों में दर्ज हुई मौतों की तुलना में लगभग 1000 अतिरिक्त मौतें देखी गई हैं। वेनेजुएला में भूकंप के बाद सरकारी संवेदनहीनता की हद पार। वेनेजुएला में बीते दिन आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। यहां मरने वालों और घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1430 हो गई, जबकि 3200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और करीब 50,000 लोग अभी भी लापता हैं। इस विनाशकारी भूकंप में सबसे अधिक ला गुआयरा राज्य प्रभावित हुआ है। यहाँ हर तरफ मलबे और सड़ते शवों की दुर्गंध फैली हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद पहले 72 घंटे जीवित लोगों को खोजने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो समय अब समाप्त हो चुका है। लापता बलूचों की आवाज उठाने वाली बलूचिस्तान की शेरनी को उम्र कैद। महरंग बलोच के साथ पाक में हो रहा खराब सलूक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लापता पुरुषों के लिए लड़ने वाली महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस महिला का नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। जब वो युवा थी तो उन्होंने पाकिस्तान के सैकड़ों परिवारों के साथ मिलकर अपने पिता की तलाश शुरू की थी। सालों बाद ये महिला डॉक्टर से एक एक्टिविस्ट बन गई और इस आंदोलन की सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक बन गई। इस आंदोलन का मकसद उन लापता पुरुषों की तलाश करना था जो जबरदस्ती गायब हो गए थे। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। केतन की हत्या के लिए चेतन ने बनाई थी 10 घंटे की घोस्ट स्ट्रेटजी। पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है। 18 जून को हुए इस खौफनाक हत्याकांड को अब समय बीतता जा रहा है और रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आया है। पुलिस रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि आरोपी सिया गोयल के प्रेमी चेतन ने पुलिस से बचने के लिए 10 घंटे की घोस्ट स्ट्रेटजी अपनाई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान काठमांडू में फंसे 52 भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वो वैध चीनी वीजा और आवश्यक प्रवेश परमिट जैसे सभी अनिवार्य दस्तावेज के बिना मानसरोवर की यात्रा पर ना जाएं। दरअसल विदेश मंत्रालय द्वारा यह एडवाइजरी उन खबरों के बाद उठाई गई है जिनमें वैध दस्तावेजों की कमी के कारण करीब 52 भारतीय तीर्थयात्रियों के नेपाल की राजधानी काठमांडू में फंसे होने की बात सामने आई है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं देख रहा हूँ इंटरनेट में बहुत से लोग सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. एंड आई डिडंट नो देयर आर सो मेनी पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स लिसनिंग. इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच. और लगे रहो मुन्ना भाई,
1: लगे रहो.
0: Yeah, we've got a lot of stories to share with
1: you
0: people.
1: Yes.
0: You know?
1: And welcome to Brizvani.
0: Yeah.
1: We hope you're enjoying our program so far. And if there's anything you want to request, please feel free.
0: Please do, okay? We gladly will play it for you people. Yeah. Okay. What else we got? We'll play another song and then I'll come back. I want to just check this.

0: और चलिए दोस्तों, 26 मिनट हो गए हैं 8 बजकर। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। और क्या हो रहा है? द एर्थक्वेक, देयर वाज अ बेबी दैट गॉट स्पेयर्ड, अ बेबी, समबडी सेंट इट टू मी, A baby, yeah. They found the baby.
1: Oh.
0: She was okay, yeah.
1: Oh, lucky. So many people have
0: been lost. Yeah, yeah. Okay.
1: Lost, eh?
0: Oh, my God.
1: This tells you, eh?
0: You just don't know, eh?
1: Mother Nature's a force to be reckoned with, I can tell
0: you. Yeah, yeah, yeah.
1: No messing around.
0: Yeah. Yeah, anyway.

0: अब 15 मिनट में हम भी इस मोड़ से गुजर जाएंगे, आने वाला है मोड़। और थैंक यू सो मच, अच्छे अच्छे मैसेजेस आप लोग भेजे हैं, कुछ फनी है, एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर वेरी फनी। ओके, यू टू आस्क मी अबाउट दिस सॉन्ग, या इट्स ऑलराइट,
1: वी डोंट आर्ग्यू।
0: Oh, some people think we are arguing.
1: I think we have a conversation. Maybe it sounds like arguing.
0: Our conversation is full of arguments.
2: See, at least we communicate.
0: Well, that's right. Yeah, we communicate. It's very important to communicate. Okay.
2: Anywho.

0: चला जाता हूँ किसी के दम में। जी हाँ दोस्तों, और अभी भी मुझे भी जाना है,
1: मुझे भी
0: हमें और कुछ भी करना है, आप लोगों को भी काम करना है, लेकिन रेडियो मेजबानी लगाए रखे आप। वन थिंग गुड अबाउट द रेडियो, यू डोंट हैव टू लुक एट एनीथिंग, राइट, जस्ट लिसन।
1: दैट्स ट्रू।
0: हमारा चेहरा देखने को नहीं है।
1: लकी
0: लकी और लकी यू, आई डोंट हैव टू लुक एट अस। ओह माय गॉड,
1: ओह माय गॉड, वी रूइन एवरीवनस डे।
0: या आई नो, यप।
1: This way they can just turn it off if they want.
0: That's right.
1: If they're not happy, they can just switch us off.
0: No, they won't do that.
1: ये
0: तो हमारा साथी है सब ना।
1: That's true.
0: Hey, can I play a song? Oh, you play? Okay, we have done. I'll play the last one.

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये अलार्म नहीं है भाई सुबह का, ये तो शताक्षी की गुड मॉर्निंग है आपसे और खासकर उनसे जिनको अभी भी गुड मॉर्निंग करने का बिल्कुल दिल नहीं है। देखिए उठ जाइए, सुबह जो है वो ढेर सारे एहसास तो आपके लिए लेकर आती ही है, लेकिन एक चीज और है जो खास आपके लिए हर रोज नई सुबह लेकर आती है, आपकी जिंदगी में एक नया दिन और आपके लिए एक नया मौका उन ख्वाहिशों को पूरा करने का जिन्हें आप बेसब्री से पूरा करना चाहते थे कल रात को। बस यही सोच रहे थे कि एक दिन और मिल जाता तो बस हम कर ही डालते इसे पूरा। तो चलिए आज फटाफट से उठ जाइए और इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आज जो ये दिन आपको मिला है इसे जाया मत करिए, इसे वेस्ट मत कीजिए और इसको खूबसूरत बनाइए अपने नए एहसासों और मोहब्बत के साथ। मैं हूँ शताक्षी दोस्तों रेडियो ब्रिजवाणी पर आज एक बार फिर से, और मेरे साथ हैं बॉलीवुड के कई बेहतरीन गाने, ऐसे मॉर्निंग ट्रैक्स जो आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिलके आज के इस जर्नी की इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिजवाणी, शताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

मिठापन से एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप रेडियो ब्रस्वानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। आगे बढ़ूं उसके पहले जो खास दिन जिनका आज है उनको हम विश करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेडियो ब्रस्वानी विश करता है उन्हें जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और आपकी जो जिंदगी है महकती रहे, खुशियों से चहकती रहे और आप हर दिन इस जिंदगी को खूबसूरती से जीते रहें, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहें और सेल्फ लव की तरफ जरूर बढ़ते रहें क्योंकि खुद से मोहब्बत बाबू मशाय बहुत जरूरी है। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि उन्हें मोहब्बत खुद से नहीं किसी और से हो रखी है, तो भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। लेकिन चाहे वेडिंग एनिवर्सरी आप इसलिए मना रहे हैं क्योंकि लव मैरिज हुई थी या फिर आपकी हुई थी अरेंज मैरिज, देखिए मैरिज तो मैरिज है और मैरिज के बाद चाहे लव हो या अरेंज हो बीवी बीवी होती है। और आप ना भी चाहे तो भी वो आपको बता देंगी कि भाई आज कुछ स्पेशल करना है, तो उनको बताने का मौका मत दीजिए और आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को और भी खास बनाइए और आज एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए ताकि जो रोज की जद्दोजहद है स्ट्रगल्स है उनके चलते आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, आज वो वक्त आप जरूर दें। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करेंगे ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: जी
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

इंटरपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों इंटरपेंस के सफर में आज एक बार फिर से आपका साथ सताक्षी दे रही है, सताक्षी निभा रही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप जिंदगी में, ये सब कुछ मजेदार जबरदस्त और बेहतरीन चल रहा है कि नहीं। देखिए मुझे पूरी उम्मीद हमेशा की तरह है कि सब कुछ एकदम चकाचक होगा, बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा। और यकीन मानिए वहां अगर सब कुछ ठीक है तो यहां हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज एक बार फिर से आपके लिए चुनकर लाई हूं कुछ ऐसे नगमे, ऐसी बातें जो आपके दिन को बनाने की पूरी कोशिश करेंगी और आपको आपकी जिंदगी से मिलवाने की भी कोशिश करेंगी। तो चलिए फिर आज दिन भी है, मुहूर्त भी है और अच्छी सी मॉर्निंग भी है, हम और आप भी हैं। और दिन और मुहूर्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि यार जब ना जिंदगी में आप कुछ करने की ठान लेते हैं, अपने दोस्तों से मिलने की, अपने किसी काम को करने की आप सोच लेते हैं, तो मुझे लगता है वही दिन वही मुहूर्त तो बन जाता है सबसे शुभ, है ना। तो आज बस मुहूर्त निकल आया है हमारी जिंदगी में कुछ बेटर करने का, हमारी जिंदगी से हमको मिलने का और एक कदम अपनी सक्सेस की तरफ और बढ़ाने का। आइए इस अगले कदम के साथ, जिंदगी के अगले कदम के साथ, हमारी सक्सेस के अगले कदम के साथ आगे बढ़ते हैं हम भी इस सुबह को गुड मॉर्निंग कहते हुए और एंजॉय करते हैं इस अगले ट्रैक को। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। ये गाना जो है ये बहुत कुछ कह देता है। वैसे देखिए, आपके सामने जो हंस रहा है, जिसकी स्माइल आपको खूबसूरत लग रही है, उसको देखकर आप ये सोच रहे हैं कि बंदा कितना खुश है अपनी जिंदगी में। तो क्या वो बंदा सच में खुश है? कभी कभी स्माइल्स भी फेक होती हैं, क्योंकि हम हर किसी के आगे अपनी तकलीफ अपना दर्द बयां नहीं कर सकते यार। लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है, हम खुश हैं ये दिखाना पड़ता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सामने वाला या आप खुद भी अगर स्माइल कर रहे हैं, ये सामने वाला आपके आगे मुस्कुरा रहा है, तो वो बहुत खुश है जिंदगी में। उसकी जिंदगी में क्या बीत रही है ये तो वही बेटर जानता। और ठीक इसी तरह से, जी हाँ, ठीक इसी तरह से आंसू भी हमेशा रियल नहीं होते, हमेशा प्योर नहीं होते, यानी कि प्योर हार्टेड इंसान ही रोता है, ऐसा नहीं होता है भाई। कभी कभी वो कहते हैं ना कि क्रोकोडाइल टीयर्स जिसे आप कहते हैं, हाँ वो भी निकलते हैं, मगरमच्छ वाले आंसू, ठीक है। तो हर एक रोते इंसान को साफ दिल का मत मान लीजिए, और ये मत मान लीजिए कि यार इसकी जिंदगी कितने दुखों से भरी हुई है। इसके लिए आपको उसके दुखों के बेस में जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी, ठीक है जी। तो चलिए अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक रियल से और एंटरटेनिंग गाने के साथ। सुनते रहिए इट हैपेंस और रहिए सताक्षी के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्फानी पर।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: रेडियो ब्रिस्बानी 1701 एम पर आप है सताक्षी के साथ और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों ये वक्त है आज एक बार फिर से गानों को बैक टू बैक सुनने का यानी गानों की हैट्रिक का। सो चलिए गानों की हैट्रिक के इस पहले ट्रैक के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बानी सुनते रहिए सताक्षी के साथ गानों की हैट्रिक।

इस फानी पर गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कई बेहतरीन और खूबसूरत गाने। लेकिन गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक दोबारा सुनने को थोड़ी ना मिलेगा इस प्रोग्राम में। आइए इसे एंजॉय करते हैं और इसके उस पार ढेर सारी बातें आपसे होंगी। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्फानी।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: 107.01 AM पर आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। इट हैपेंस में सताक्षी आज एक बार फिर से आपके साथ है और सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं कुछ बेहतरीन बॉलीवुड नंबर्स। वैसे लगता है ना यार, जिंदगी में अगर अपने साथ हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए, कितनी जबरदस्त हो जाए। जब दोस्तों वाली उम्र होती है तो दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जब कंफर्ट जोन मिलता है तो पेरेंट्स के साथ उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर का साथ मिलता है तो लगता है कि यार इसके साथ पूरी जिंदगी भर साथ चलना है। हाँ, चलना तो है, साथ चलना है, लेकिन आपके लिए कोई और नहीं चलने वाला इस दुनिया में। अपने रास्ते पर, अपनी रोड पर आपको खुद ही चलना है और यकीन मानिए इस रोड को आपको अकेले ही पार करना है। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, छूटते रहेंगे, मगर आपके पास ऑप्शन नहीं है सब कुछ छोड़ के भागने का। ये रास्ता आपके लिए बनाया गया है और जितना लंबा बनाया गया है आपको उतना लंबा अकेले भी तय करना पड़ेगा। हमेशा जिन लोगों को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं वो आपके लिए आपकी रोड पर साथ नहीं चलेंगे। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस, सताक्षी है आपके साथ।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

सदाक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। जी हाँ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो जिसमें आज एक बार फिर से सदाक्षी आपके साथ कुछ बेहतरीन गानों के साथ साथ निभा रही है। और बातें तो यार हमारी होती है जबरदस्त और मजेदार है। तो इन बातों से याद आया कि मैं ये पूछ रही थी आपसे, एक चीज बताइए भाई कि पास्ट को लेकर आज भी रोते हैं? पास्ट को लेकर आज भी परेशान होते हैं? वही तो, हम में से ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं कि अपने पास्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उससे क्या होता है? देखिए, उससे ये होता है कि आपका पास्ट आपके आज को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि आप कितने भी खुशी दिखा लें, आप दिल से खुश नहीं है। असल में पास्ट जब प्रेजेंट को इफेक्ट करना बंद कर देना, तभी जिंदगी में असली खुशी आती है। तो हटाइए ना ये पास्ट। क्या रखा है इसमें? कुछ भी तो नहीं रखा है। मतलब सोचेंगे, परेशान होंगे, आप कल में जाके उस कल को बदल नहीं सकते हैं और ना ही बीता हुआ कल आज में ला सकते हैं। तो कम से कम इतना ही कर लें कि कम से कम आज को जी लें, है ना जी। तो चलिए, जीते हैं आज को पूरी तरह से खुलकर और एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक। सुनते रहिए इट हैपेंस, सताक्षी है आपके साथ।

0: एसपी बिग शाट आउट।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सरसों की माला पे सिमरू मैं।
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.